0: स्पेशल गुड इवनिंग टू माय चैन मोरा निकिशा क्यूपिड थैंक्स फॉर द लवली मील यस्टरडे डिस्पाइट व्हाट एंड वे चैन फारा स्टिल लव यू.
1: Uh-huh.
0: I want to say a special good evening to my twin mother, Nikisha Cupid. Thanks for the lovely meal yesterday, despite what? I know you turned far, I still love you.